शुभ प्रभात दोस्तों, आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सुनते रहें। एक बार एक सज्जन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सत्संग के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रश्न किया, महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मिलेगी? परमहंस जी ने कहा, जब मैं चला जाएगा तो खुद ही मुक्ति की अनुभूति होने लगेगी। फिर स्वामी जी ने बताया, मैं दो तरह का होता है, एक पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता सुनता या महसूस करता हूं उसमें कुछ भी मेरा नहीं, यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह हुआ पक्का मैं। ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये सब कुछ सोचना हुआ कच्चा मैं। स्वामी जी ने आगे कहा, जिस दिन ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा ना कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो समझो वो जीवन मुक्त हो गया। जिस तरह धनिकों के घर की सेविकाएं मालिकों के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पालती पोसती हैं ना, पर जानती हैं कि उन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, उसी तरह हम सबको बिना किसी मोह ममता और लगाव के अपने जीवन को बिताना चाहिए। व्यर्थ की मोह ममता से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सदाचार का पालन करते हुए भगवान की भक्ति और असहायों की सेवा करते रहने में ही कल्याण होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने आप को कष्ट देने लगें, अपने शरीर को अपना ना माने, उसे भगवान के भरोसे छोड़ें। ये समझें कि भगवान ने हमें ये शरीर रहने के लिए इस धरती पर दिया है, हमें उसका ख्याल तो रखना ही होगा ना दोस्तों। इन सभी बातों को सुनकर उस व्यक्ति की जिज्ञासाओं का समाधान हो गया।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम किसे ज्यादा याद करते हैं, भगवान को या शैतान को? एक कहावत बहुत प्रचलित है, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। अब बताइए, ये सोचने वाली बात है ना कि भगवान को याद करो और भगवान हाजिर, ये कहावत क्यों नहीं बनी? तो क्या शैतान भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और दयालु है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सूत्र में महत्व शैतान की शक्ति का नहीं, बल्कि हमारी शिद्दत का है। जिस शिद्दत से हम शैतान को याद करते हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से हम भगवान को भी याद करते हैं? यदि करें तो मुझे विश्वास है कि भगवान भी तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर है ही, वो तो सदैव हमारे आसपास है। होता ये है कि हम भगवान को याद ही तब करते हैं जब हमें भगवान से, भगवान नहीं, उनकी शक्ति चाहिए होती है। उनको याद करके हम उनसे शैतानों वाले काम करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि या तो वो हमें अपनी शक्ति दे दे, जिसे हम सामने वाले का सर्वनाश कर सके, या वो हमें बचाते हुए खुद ही सामने वाले को मिटा दे। हम उनकी शक्ति सृजन के लिए नहीं, संहार के लिए मांगते हैं, जिसके लिए भगवान राजी नहीं होते, क्योंकि भगवान मिटाने में नहीं, बनाने में विश्वास रखते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो भगवान है, संतुलन में विश्वास रखते हैं। वो युक्ति से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि कहावत तो हमने बनाई कि शैतान को याद किया और शैतान हाजिर, क्या इसे हमें अब बदलना नहीं चाहिए? भगवान को याद कीजिए और भगवान हाजिर। सोचिए, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। आगे बढ़ने से लगता है डर। उन्होंने एक उदास सी मुस्कान दी और कहा, मौके तो कई आए भैया, पर मैं ही हिम्मत नहीं कर पाता। तरक्की की ओर ले जाने वाली राह पर कदम बढ़ाना आसान नहीं होता। कई सवाल मन में उठते हैं, कई तरह के डर परेशान करते हैं। दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ और। अपने सुरक्षित दायरे से बाहर हम खुद को बड़ा कमजोर पाते हैं। हर नई शुरुआत हमें डराने लगती है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले भीतर के अपने इस डर को भगाना ही पड़ेगा। हम सुखी हों या दुखी, अपनी जिंदगी पसंद हो या ना पसंद, हम एक तरह से जीने के आदि हो जाते हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बैठाना हमें बड़ा मुश्किल नजर आने लगता है। हम हारने का, दूसरों की हंसी का, रिश्ते छूट जाने का, जो हाथ में है उसे गवा देने का डर सताने लगता है। नए बदलावों के लिए हमें अपनी आदतों को भी बदलना पड़ता है, इसलिए हर नई शुरुआत में हमें दिक्कत होती है। हम आगे बढ़ने से बचने लगते हैं, लेकिन बदलाव तो तय है। नया कदम बढ़ाते समय थोड़ी बेचैनी होना जायज है, पर बिना कोशिश किए खुद से ही उन्हें बुरा या बर्बादी की ओर ले जाने वाला मान लेना सही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल पीटर्स कहते हैं, हमें अपने डरों से लड़ना होता है। उनसे बचकर छिपने की कोई जगह जमीन पर नहीं है। हम अपने डर का सामना करके ही आगे जा सकते हैं। कदम बढ़ाते समय अगर हम गिर भी जाते हैं तो भी कुछ आगे तो बढ़ते ही है ना। पर अपने डर से बचकर तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जब तक हम डरते रहते हैं, हम अपने पहले वाले दायरे में ही सिमटे रहते हैं और फिर वहीं अटके रहकर समय की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। लेखिका ग्लेंडा क्लाउड कहती हैं, बदलाव तय है, तरक्की हमारे हाथ में ही है। बुरा ही होगा इसके बजाय यह सोचें कि क्या अच्छा कर सकते हैं। जब भी डर लगे एक बार पीछे मुड़कर देखें। डर के बावजूद पहले भी कई बार आपने कदम आगे बढ़ाए हैं और बाद में लगा कि आपने अच्छा किया था। आगे क्या होगा हम पूरी तरह नहीं जानते, पर जब ठान लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तब कई नए रास्ते सूझने लगते हैं। फिर खुद पर भरोसा रखने का मतलब तो यह नहीं है कि हम आगे की तैयारी ही ना करें। डरने की बजाय हम खुद को आगे के लिए मजबूत बनाएं, जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए जुट जाएं। यह ठीक है कि कुछ गलत भी हो सकता है, हम उस गलत को ठीक करने के लिए तैयार रहें। समय आपको बदले, इससे पहले आप अपने समय को बदल डालें।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

था तोता। वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या को धरने की जगह भी तो होनी चाहिए। नकलवासी को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान मिट गया। दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही, मरम्मत के काम भी लगे ही रहते, फिर झाड़ू पोछा और पॉलिश की धूम भी मची ही रहती। जो भी देखता यही कहता, उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वह और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज अगर सचमुच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलवासियों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों और मरम्मत की देखभाल करने वालों को भी बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें कर रहे हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर पर समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाया गया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से भी देख लें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बकटूट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वे अपने मुसाहिबों मूलगों मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षा शाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास पंख घड़ियाल ढोल तासे खुरदक नगाड़े तुरियां भेरियां दमामे कांसे बांसुरियां झाल करताल मृदंग जगझंप आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री मजदूर सुनार नकलवीज देखभाल करने वाले और उन सब के ममेरे फुफेरे चचेरे मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं।

0: उसे देखे बिना ही काम चल सकता है।
1: राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है।
0: पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, सिर्फ शिक्षा थी, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीरने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तोते का मुंह ठसा ठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगा तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरीके से उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रकृति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गर्जा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की साकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसा मुंह लटकाकर और सर हिलाकर बोला, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता पुदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है। ना कतई नहीं, अब भी गाता है। नहीं तो, दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है। ना, राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया, तोते ने ना हां की ना हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया।

दोस्तों, भक्तिमय दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सुनते रहिए

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल, और थोड़ा सा अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनाई ये सब इंसान नहीं पेट्स होते, तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो, खेलते हैं। अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले, सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है, जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है। सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स, और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विथ एटीट्यूड। जेमिनाई, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनाई एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो उसका रिप्लाई देगा, और फिर उसका भी रिप्लाई देगा, और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है। फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पट्टी भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता,
खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। केप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। केप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर हैं अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिस्कनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है और किसी में ड्रीम्स। ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीज ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त। अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियाक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है, मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहाँ लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहाँ चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहाँ लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा, कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए? जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को,
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट दरवाजे पर, एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। With love, Henry। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं वो एक एहसास था। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो। हाँ घर पे बिजी हूँ।

वर्ड ऑफ द डे जादजूखरी। दोस्तों, सुबह हो, शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं, तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजूखरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजूखरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजूखरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं? और दोस्त, क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है? और अगर गैडजूखरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है? गैडजूखरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो, तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं? कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैडजूखरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है, गैडजूखरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है, जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैडजूखरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन। नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया? गैडजूखरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया? रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद, और शायद यही है गैडजूखरी का असली मतलब।
शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

ಇನ್ನಾಯ ಅದು ಯ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮಚೋ.

जोडियाक जंक्शन, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, ना मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहां जा

रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनाई की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं? बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का। गाइज रिलैक्स, मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल एक लियो की तरह। विरेन परफेक्शन लवर। विरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है। बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना 2 टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली। डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था। बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो। बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा। उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो? सब उसे देखते रह गए। बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी। शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए, जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन रुक गया। पहली बार शायद मुझे नहीं पता, भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया। सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब? समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं, मैं जा कहां रहा हूं? और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो? सोचिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी-कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। Stay tuned, stay happy and stay curious. Bye.

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं जॉन डेवी जी के बारे में। शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, लेकिन जिंदगी में सोचने समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वो किशोर भी सोने पर सुहागी की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, देश गृह युद्ध में ही खर्च हुआ जा रहा था, मास्टर खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर तो हर दम बस कोड़ा थामे हाथ साफ करने की फिराक में ही दिखते थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। 54 गलती पर 16 आने पिटाई मामूली बात थी। हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं तो कड़वा बोल सकते हैं, सीधे सीधे बेवकूफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पिटाई होती तब हर कोई बस तमाशा ही देखता। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में नहीं आती थी। वो सीधा साधा स्कूली किशोर बहुत बचकर चलता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। सारे शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे मानो गृह युद्ध हो रहा हो। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी हुई किसी मामूली सी चोट का बदला ले रहे थे। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लड़का भय से और अपमान से थर्रा रहा था, उसकी सहमी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता और मार शरीर पर पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्कुरा रहे थे, पर ये संवेदनशील किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। कमजोर था ना, चुपचाप रह गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो वो भी नहीं बचता। स्कूल की ये त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई, बस चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ डाला। पिटाई से सुधरने की गारंटी तो नहीं, पर बिगड़ जाना तो बिल्कुल तय है। और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए तो, बच्चों को स्कूलों में घसीट घसीट कर डरा धमका कर लाया जा रहा है। नहीं नहीं, शिक्षा का ये रूप तो बिल्कुल गलत है, एक नया रूप बनाना होगा। उस किशोर ने, यानी कि जॉन डेवी ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में ही टीचर बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 में ही एहसास हुआ कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार करेंगे। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े।
शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों प्रयासों के साथ उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं। शिक्षा खुद की कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से बहती हुई हमेशा बहने वाली चीज है। शिक्षा की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। वो उसी कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाते थे जहां पढ़ने के लिए भारत से भीम राव अंबेडकर जी गए थे। पूरे 2 साल जॉन डेवी ने अंबेडकर को अपने पास रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। बहुत प्यारे स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा अंबेडकर के बहुत काम आई। अंबेडकर ने बार बार माना कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी अंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी जी भी ही याद आते हैं। जॉन डेवी 1859 से 1952 तक कोड़े मारने वाले उन शिक्षकों को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे, सारे लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक हुए नहीं है। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल हुई नहीं है। एक दिन आएगा जब दुनिया के सभी स्कूलों में सारे टीचर्स कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ कुछ करते हुए सच्ची शिक्षा पाएंगे।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी, कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं, जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। आइए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो अपने आप में मोटिवेशन का एक स्तंभ बन चुका है। इस गांव से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मध्य प्रदेश का कांकड़ी गांव वैसे तो एक बहुत साधारण सा गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है वो असाधारण है। काकड़ी गांव सतपुड़ा अंचल का एक छोटा सा गांव है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण वहां बनाया गया था। इसमें बस 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं। वो गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब ये गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए सब तैयार हुए। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना बनाई गई। सभी लोगों ने मिलकर बैठकों में सब कुछ तय किया। योजना के अनुसार जब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए, फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब भी यहां किसी की बेटी की शादी होगी तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद हमेशा आती रहे। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां के हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिससे जैविक अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फाग राम जी कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने और हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े हैं। ये पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस तरह की पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों और हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का एक तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर रहती है। ये पहल सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पहल हमारे ही देश में छोटे छोटे गांवों में शुरू हो चुकी है। क्या हमें थोड़ा और जागरूक नहीं होना चाहिए इस बारे में?

दोस्तों, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम पहचानें कि नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आए ही नहीं, और अगर वो आए भी तो हम उन्हें अपने पास आने की इजाजत न दें। सावधान रहें दोस्तों, हमेशा खुश रहें, जोश से भरे रहें। आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ।

ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं, तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत तो होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख शांति और लाभ दें वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें हानि पहुंचाएं वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छांव की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है। लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो ये है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है, हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी ही अस्थायी हो जाती है, जबकि नकारात्मकता
ज्यादा स्थायी और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है, लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।

एक्सेस कराने के लिए शब्द भी दिए हैं, ध्वनियां भी दी हैं। हम बोलने के लिए बने हैं, मौन हमें ओढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खामोशी का कोई मतलब नहीं। शब्द और ध्वनियां हमें हमारे परिवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खामोशी हमें अपने भीतर ले जाने का काम करती है, आत्म साक्षात में हमारी मदद करती है। ध्वनियां और मौन दोनों का अपना अपना महत्व है। खामोशी अगर अप्रिय स्थिति से बचाती है तो संवाद उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आप इलाज से परहेज बेहतर वाली सोच के कायल हैं तो खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों की ही अधिकता समस्याओं का कारक बनती है, इसलिए दोनों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया

0: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
4: जी मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, तो उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
4: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी, एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
4: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
4: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं।

0: हमारे खेत खलियान से निकली है,
1: कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव
0: उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि मालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: जी, आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा कर रहे थे मन की बात। और आइए अब सुनते हैं ये पेशकश।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, उन घंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब अपन है हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों को लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बात है।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषज्ञ से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषज्ञ की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात, समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, क्या आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रान वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा माटे गामे गाम थी मारा भाइयों, मारी बोनो, मारा काका, मारी काकियो

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सचर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: कहना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार

रेडियो टांडा व्ही 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों, कैसे हैं? आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए जलवायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है। ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं। फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी खेती को लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है। यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है। टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए। और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5। यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें, तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, भीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्राय 1 केचुआ 2 से 3 कॉकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कॉकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। एक केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट 60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केचुआ का चयन करना चाहिए। केचुआ का चयन कैसे होता है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि

से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके, भूसा, घास, पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अड़सड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं? बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार की केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है, इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5 पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहता है उसके अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर बेड हो उसके ऊपर बरसात और धूप को बचाने के लिए छत और छप्पर होना अति आवश्यक है। बर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाती है उसके कैसे निकालना चाहिए? जब खाद बन जाती है तो उसमें 7 दिन पूर्व से पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। कंपोस्ट को देखने चाय की पत्ती की तरह दिखने लगे और पकड़ने पर चिपकने नहीं चाहिए और बनी खाद में केंचुआ की संख्या कमी और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओं अलग कर दें और छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता? तैयार खाद को कहां उपयोग करना चाहिए इसकी योजना पहले बनानी चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%। लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: और आप मारे ही थोड़ा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले।
0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल रॉयल साहब आज हमारे प्रोग्राम में हैं, हमारे मेहमान हैं। कर्नल साहब से ही बाकी मैं बातचीत करूंगा और उनके बारे में जानेंगे हम। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद साहब एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कर्नल साहब कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए।
2: सर मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे, तो मेरा जन्म एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडा, ये खड़गपुर के पास एक जगह है, उस स्टेशन में हुआ। और जो 65 का युद्ध है, एज अ चाइल्ड बच्चे के रूप में मैंने लाइव देखा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के सेबर जेट्स ने अटैक किया था कलाई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर, और मेरे को वो विविडली अभी तक याद है।
0: वाह क्या बात है, बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा सर, आई एम श्योर। तो दोस्तों आपने सुना कर्नल साहब का एक्सपीरियंस और कर्नल साहब के जन्म स्थान के बारे में। कर्नल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई गीत बताएं जो आपके हुक्म पर हम उन्हें सुनवा सकें।
2: सर मेरा निवेदन है, मैं किशोर कुमार का बड़ा फैन हूं, तो एक उनका गाना है, गाने के बोल हैं, किसका रास्ता देखें ऐ दिल ऐ सौदाई।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, देवरंद के ऊपर फिल्माया गया यह गीत, किशोर कुमार जी का गाया हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं इसी गीत को।

0: बहुत ही प्यारा गीत। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहां रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
1: साहब अभी लास्ट 20 साल से मैं जयपुर में वैशाली नगर में रहता हूं। यहां पर मैंने अपना मकान बनाया है। ओरिजिनली हम लोग सब कोटा से बिलोंग करते हैं। अभी 20 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूं। अब जयपुर की तो क्या बात करें साहब। अपन शुरू करते हैं यहाँ के आमेर के किले से, नाहरगढ़ का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये तो सब देखने की जगह हुई। और जो खासियत यहाँ की है वो यहाँ के जो रिजाइडिंग डीटी हैं, यहाँ के जो भगवान हैं जिनकी यहाँ पर सबकी आस्था है, उनमें वो है गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ। और खाने पीने में तो यहाँ की कोई कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ का घेवर, यहाँ की प्याज की कचौरी और भगत के लड्डू, ये सब चीजें जयपुर की फेमस।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दोस्तों को एक इसी तरीके का सुंदर सा गीत भी बताएं।
1: एक सर बहुत मार्मिक और बहुत ही बढ़िया गाना, हस्बैंड वाइफ के या लवर्स के प्यार के ऊपर लिखा हुआ है और इसको गाया है किशोर कुमार ने। ये गाना है रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार भी।
0: क्या बात है, कब क्या बात है। नवीन निश्चल साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं कर्नल साहब के हुक्म पर।

0: सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं एयरफोर्स के परिवेश में पला बड़ा हूं। मेरे आसपास पूरे टाइम एयरफोर्स

0: रिलेटेड बातें होती थी और मेरे फादर साहब भी सर्व कर रहे थे उस टाइम। तो मैं साहब बचपन में पायलट बनना चाहता था, फाइटर पायलट, और मैंने कोशिश भी करी क्योंकि मैंने एनडीए का रिटर्न एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में नहीं हो करके, जो कि मैंने उसका बेसिक टेस्ट पास कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ स्लाइट वीकनेस इन माई साइट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दी आर्मी।
1: जी
0: मैं पायलट बनना चाहता।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके के बहुत बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह बचपन में कुछ बनना चाहते थे लेकिन किस्मत ने कुछ और बनाया और वो वहां जबरदस्त सक्सेसफुल हुए, बहुत खुश रहे। तो यूं देखें तो डेस्टिनी भी हमारी कई बार हमारे फ्यूचर करियर के लिए काम करती है और हम इवेंचुअली खुश भी रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दोस्तों के लिए अगला गीत बताएं।
0: सर, किशोर कुमार लता मंगेशकर का एक गाना है, बड़ी वफा से निभाई हमने तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसी प्यारे से गीत को।

0: सर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी पसंद के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: सर मैं म्यूजिक का बहुत शौकीन हूँ और मैं बड़ी वैरायटी की म्यूजिक सुनता हूँ, बहुत वाइड वैरायटी की, लेकिन संक्षिप्त में माय फेवरेट सिंगर इज किशोर कुमार। और उसके भी रीजन है, किशोर कुमार इसलिए क्योंकि अल्टीमेट जीनियस अगर कोई सिंगिंग में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, इस कला से रिलेटेड कोई भी अगर आदमी रहा है तो वो किशोर कुमार जी रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। सर इसी बात पे हमारे दोस्तों के लिए कोई गीत सुनवाइए।
1: ये गाना वैसे किशोर कुमार से तो रिलेटेड नहीं है, ये लता जी से रिलेटेड है, लेकिन ये कई गांठे दिल की खोलता है। इस गाने के बोल हैं, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
0: ओहो ओहो, क्या कह दिया सर, क्या कह दिया। ये गाना तो मेरे दिल के बहुत बहुत नजदीक है। नरगिस मैम के ऊपर ये फिल्माया गया था और इसमें फिरोज खान थे उस गाने में। इस फिल्म में नरगिस जी की स्प्लिट पर्सनालिटी थी, श्रिजोफेनिया था इनको। ये रात में कुछ और हो जाती थी और दिन में कुछ और। और रात में ये दिन में बहुत ही सीधी सादी महिला होती थी और रात में ये पार्टी एनिमल हो जाती थी और पार्टी करने निकल पड़ती थी। बहुत ही प्यारी पटकथा थी इस फिल्म की, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। आइए दोस्तों इसी गीत को सुनते हैं कर्नल साहब के हुक्म पर।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। सर आगे बढ़ते हैं, अब एक बहुत मजेदार सवाल पूछना चाहूंगा इससे आपसे, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बड़ा ही प्यारा और मजेदार जवाब भी मुझे मिलेगा। वो ये कि फर्ज कीजिए अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला कोई जिन्न मिल जाए कहीं से
1: जी,
0: तो क्या मांगेंगे आप?
1: सर मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, फौज में बड़ी लंबी नौकरी करी है 28 साल की, उससे पहले मेरी 12 साल की ट्रेनिंग है मिलिट्री स्कूल में, एनडीए में और आईएमए में। मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूं अगर ये जिन मेरे पास कोई मेरी चॉइस या मेरी विश लेकर के आए तो तीनों जिन से मैं एक ही चीज मांगूंगा। पहले जिन से मांगूंगा अपनी खुद की हेल्थ, दूसरे जिन से मांगूंगा अपने परिवार की हेल्थ, और तीसरे जिन से मांगूंगा अपने सभी मिलने वालों की हेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है सर, अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हर चीज अर्जित की जा सकती है लेकिन हेल्थ को ना तो खरीदा जा सकता है, ना इसका व्यापार किया जा सकता है, ना ये कभी भी मोल भाव की जा सकती।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे भी कहा गया है कि इस दुनिया में हेल्थ पहली दौलत होती है, उसके बाद कोई भी दौलत जो हो वो आती है। बहुत सुंदर। तो सर हुकुम कीजिए कौन सा गीत सुनवाया जाए।
1: साहब एक हेमंत दादा का बहुत बड़ा फेमस गाना है, अगेन वो भी जिस तरीके की आप बात कर रहे थे स्प्लिट पर्सनैलिटी पे या किसी पे, इसमें धर्मेंद्र साहब ने एक भी डायलॉग नहीं बोला है, और ये गाना है तुम पुकार लो।
0: जी जी जी जी,
1: ये हेमंत कुमार जी ने गाया है।
0: वहीदा रहमान इस फिल्म में एक नर्स थी जो कि धर्मेंद्र की सेवा कर रही थी, और उनसे उन्हें मोहब्बत हो जाती है, लेकिन धर्मेंद्र चले जाते हैं ठीक होकर, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और उसके बाद राजेश खन्ना जी आते हैं उसी तरीके के बीमार बनकर। बहुत ही प्यारा गीत हेमंत दा का गाया हुआ। लीजिए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: सर आगे बढ़ते हैं और मैं पूछना चाहूंगा एक और मजेदार सवाल कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी में पीछे जाकर पास्ट में जाकर कोई एक चीज को बदल सकें तो क्या बदलेंगे आप?
1: बड़ा रोचक सवाल है साहब। वैसे तो मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा, आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, लेकिन क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनता, अगर मेरी डेस्टिनी में होता और भगवान मेरे को 6x6 की आईसाइट देते तो मैं इस वक्त भारत के टॉप मोस्ट फाइटर पायलट में से होता। मैं चाहता कि मेरी आईसाइट 6x6 होती जब मेरा सिलेक्शन होना था।
0: क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, दिस इज ब्यूटिफुल।

0: थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारे गीत के लिए। अब अगला सवाल ये है मेरा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी बहुत मल्टीफेरियस और बहुत वेरीड हॉबीज है
0: जी,
1: क्या कि मैं आई कीप माई सेल्फ बिजी, तो कोई ना कोई हॉबी को मैं परसू करता रहता हूं। आउटडोर में मेरी हॉबीज हैं, गोल्फ खेलता हूं सप्ताह में 3 बार
0: जी,
1: स्क्वाश खेलता था लेकिन अभी मेरे को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि स्क्वाश बंद कर दे क्योंकि नाउ आई एम अ सीनियर सिटीजन, बट मैं 50-55 साल की उम्र तक खेलता रहा हूं
0: जी।
1: और स्विम करता था रोज 1 किलोमीटर, समर्स में अभी भी 1 किलोमीटर स्विमिंग करता हूं डेली मॉर्निंग
0: जी।
1: और रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ कोर्स रोज नियम से लिखता हूं और पढ़ता हूं, और इंडोर गेम्स में बच्चों के साथ चेस, स्क्रैबल और म्यूजिक सुनता हूं, और ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन हूं, बहुत ट्रैवल करता हूं
0: जी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आपको एंजॉय करने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि आपकी बात सुनकर तमाम तमाम लोगों को ये लगेगा इतना वक्त आप निकालते कहां से हैं, लेकिन दरअसल वक्त तो 24 घंटे सभी की झोली में

0: निकाला जाता है
1: जी।
0: मुद्दा यह है हम अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। टाइम को तो मैनेज कोई कर ही नहीं सकता।
1: सही बात।
0: बहुत गलत टर्म यूज किया जाता है मैनेजमेंट स्कूल्स में कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप।
1: हमें अपने आप को मैनेज करना चाहिए
0: जी। टाइम को तो मैनेज कोई कर ही नहीं सकता साहब।
1: सही बात।
0: कोई लटक के दिखाए जी 12 बजे से, 12 बजने को रोक दे जी कि 12 ही बजे रहेंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो ये टर्म ही गलत है कि हम टाइम को मैनेज करेंगे। हम टाइम को नहीं, अपने आप को मैनेज करेंगे। बहुत खूबसूरत सर, बताइए अगला गीत कौन सा सुनवाएं।
1: सर बहुत फेमस गाना है, देवानंद सॉरी राजेश खन्ना साहब पे फिल्माया गया है
0: जी,
1: कुछ तो लोग कहेंगे।
0: वाह क्या बात है। आइए दोस्तों, राजेश खन्ना साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत सुनते हैं।

0: सर अगला सवाल अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे बड़ा ही प्यारा जवाब भी मुझे मिलेगा। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: सर सबसे मुश्किल होता है अपने बारे में बखान करना, अपनी बात करना, क्योंकि इसमें अहम और ईगो झलकती है
0: जी,
1: और फॉल्स ह्यूमिलिटी भी गलत चीज है। तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे को किसी से डिस्क्राइब करना चाहें किसी और के सामने, तो आप कहें एक बहुत बहुआयामी और बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी मिला।
0: जी
1: आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस अ समवन हु इज वेरी इंटरेस्टिंग।
0: जी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत संक्षिप्त, बहुत क्रिस्प, बहुत समराइज्ड और बहुत सारा मीनिंग लिया हुआ जवाब। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट कौन सा गीत सुनवा दे?
1: सर ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ गाना है, मेरे को पता नहीं इसके लिरिक राइटर कौन है, मे बी साहिर साहब हैं। गाने के बोल हैं, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत खूब।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा आपसे आपके सबसे अच्छे गुण सीखना चाहे, आपको मेंटर बनाना चाहे, तो क्या आप उसे सिखाएंगे?
1: साहब मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, और मैंने बचपन से एक मंत्र को फॉलो किया है, वो है डिसिप्लिन। हर चीज के अंदर अनुशासन जरूरी है। बगैर अनुशासन के अगर अपन ये करंट या बिजली जो है, अगर ये वायर में से किसी जगह जाती नहीं है, इसको लूज छोड़ देंगे
0: जी,
1: तो ये बिजली भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी,
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात
1: बिजली
0: है।
1: में बहुत ऊर्जा और एनर्जी होती है।
0: जी जी जी
1: बिकॉज इट इज बीन रिस्ट्रिक्टेड एंड इट इज डिसिप्लिन, इट इज फोकस्ड, देन इट रीचेज द अदर पॉइंट।
0: फैंटास्टिक।
1: इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है डिसिप्लिन की।
0: जी बहुत बढ़िया सर, स्पोकन लाइक अ ट्रू मिलिट्री मैन, जिनको हम लोग जेंटलमैन कहते हैं। इस बात को समझने में बाकी दुनिया को बड़ी तकलीफ होती है साहब, कि ये आर्मी वाले वैसे तो बड़े रोबस्ट आयरन मैन और बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल काम करने वाले लोग होते हैं, रफ एंड टफ, बट साइमल्टेनियसली इनको जेंटलमैन क्यों कहा जाता है? ये बात नॉर्मल रूटीन लोगों को समझ नहीं आती। वो डिसिप्लिन ही है जो किसी भी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में हो, डिसिप्लिन ही ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को जेंटलमैन बना सकता है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: सर ये बड़ा मस्ताना बढ़िया गाना है, ये राजेश खन्ना साहब पे फिल्माया गया है और गाना है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है।
0: वाह, आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत को सुनते हैं।

0: कर्नल सर, थैंक यू सो मच. अब हम हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए उन्हें.
1: सर वैसे तो मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन या कोई बहुत ऊंचे पद पर आसीन इंडिविजुअल नहीं हूं. आपके तरह मैं भी साधारण, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी लाइफ के जर्नी से, एक रडियार्ड किपलिंग पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे, उनके पहले इंग्लिश वर्जन को आपके सामने देता हूं, उसके बाद मैं उसके हिंदी में तर्जुमा करूं.
0: जी,
1: वो पोएम थी उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था इफ, और उसके लास्ट स्टैंजा ये है, इफ यू कैन वॉक विद किंग्स विद योर हेड हेल्ड हाई बट नेवर लूज द कॉमन टच देन यू आर ए मैन माई फ्रेंड. इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि अगर आप अपने अंदर इतनी क्षमता रखते हैं कि आपको झेप नहीं आए, आप राजाओं के साथ चल सके अपना सिर ऊपर रख करके, और उसके बावजूद अपने आसपास जो कॉमन लोग हैं उनसे टच नहीं भूलें, उनके साथ उठ बैठ सके, उनके ऊपर अपना घमंड और अपनी पावर नहीं दिखाएं, तब आप एक आदमी कहलाएंगे.
0: बहुत सुंदर कर्नल साहब, ये जो बात आपने कही है, ये मैं कोई परसेंटेज नहीं कह सकता, मैं गिनती नहीं बता सकता, लेकिन अपने पर्सनल जिंदगी में मैंने भी ये महसूस किया है कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती. जैसे ही उनको कोई पोस्ट, राजा जैसी पोस्ट जिसमें वो अपने सर को ऊंचा करके चलते हैं, वो तमाम नीचे वालों को तो कभी के भूल चुके होते हैं. और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो फिर सच्चे इंसान तो नहीं कहला सकते. बेहद खूबसूरत कर्नल साहब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए. आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, हमारे श्रोताओं को भी आपकी बातें सुन के मजा आया होगा. और चलते चलते एक गीत सुनवा दीजिए.
1: सर ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये केके साहब का गाना है, उन्नत यो थे सिंगर, और गाने के बोल हैं प्यार के पल.
0: जी
1: यारो दोस्ती, ये प्यार के पल, ये है प्यार के, बहुत फेमस गाना है. और उनकी बड़ी यंग एज में वो शांत हो गए, बट बड़े टैलेंटेड और बढ़िया सिंगर थे केके.
0: फैंटास्टिक सर, आइए दोस्तों इसी प्यारे से गीत को सुनते हैं कर्नल साहब के हुक्म पर. सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.
1: बहुत बहुत धन्यवाद साहब, यू स्पेयर्ड योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा. और कभी आप जयपुर पधारें तो अपना मिलना हो.
0: प्लेजर इज माइन सर, प्लेजर इज माइन. थैंक यू
1: वेरी मच सर, थैंक यू.

0: मंजिल मंजिल।
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं जॉन डेवी जी के बारे में। शिक्षा की शरण में जाना मनुष्य होने की सबसे बड़ी शर्त है। वैसे तो शिक्षा सिलसिला है, लेकिन जिंदगी में सोचने समझने की शुरुआत के समय ही शिक्षा यदि शुरू हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अपने गुजारे के लिए हर सुबह अखबार बांटने वाला वो किशोर भी सोने पर सुहागी की तलाश में ही स्कूल जाता था। अमेरिका में तब स्कूली व्यवस्था जर्जर थी, देश गृह युद्ध में ही खर्च हुआ जा रहा था, मास्टर खासे रोष खाए रहते थे। कुछ मास्टर तो हर दम बस कोड़ा थामे हाथ साफ करने की फिराक में ही दिखते थे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो रोज पिटने के लिए ही शायद स्कूल आते थे। 54 गलती पर 16 आने पिटाई मामूली बात थी। हर बार कोड़े से ज्यादा जुबान बरसती थी। सब मानते थे कि चलो शिक्षक हैं तो अकड़वा बोल सकते हैं, सीधे सीधे बेवकूफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पिटाई होती तब हर कोई बस तमाशा ही देखता। ज्यादातर लोग दूसरे की पिटाई देखकर मंद मंद मुस्कुराते थे, पर उस किशोर को पिटाई की व्यर्थता तब भी समझ में नहीं आती थी। वो सीधा साधा स्कूली किशोर बहुत बचकर चलता था। स्कूल में अच्छे अनुभव कम और बुरे अनुभव ज्यादा मिलते थे। पढ़ना अच्छा लगता था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो हद हो गई, एक गरीब लड़के की जमकर पिटाई हो रही थी। सारे शिक्षक बेचारे लड़के को ऐसे पीट रहे थे मानो गृह युद्ध हो रहा हो। सामंत स्वभाव के शिक्षक अपने अहंकार पर पड़ी हुई किसी मामूली सी चोट का बदला ले रहे थे। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लड़का भय से और अपमान से थर्रा रहा था, उसकी सहमी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई सुनवाई नहीं। लड़का बचाव में जब भी मुंह खोलता और मार शरीर पर पड़ती। उस गरीब लड़के की पिटाई पर तब भी लोग मुस्कुरा रहे थे, पर ये संवेदनशील किशोर अंदर ही अंदर रो रहा था। कमजोर था ना, चुपचाप रह गया, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो वो भी नहीं बचता। स्कूल की ये त्रासद घटना मानो दिल में बस गई। पिटने वाला बच्चा तो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। शिक्षक शिक्षा और स्कूल के प्रति जो सहज लगाव होना चाहिए वो तो कभी नहीं आएगा। दिल में गांठें रह गईं, कभी फिजूल डांट से तो कभी बेरहम मार से। कौन रोके डांट और कौन रोके पिटाई, बस चिंतन की धारा बह निकली। शिक्षक शायद इसलिए पीटते थे कि एक ही बार में सुधार देंगे, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने हमेशा के लिए कितना कुछ बिगाड़ डाला। पिटाई से सुधरने की गारंटी तो नहीं, पर बिगड़ जाना तो बिल्कुल तय है। और ऐसे बिगड़े माहौल में न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए तो, बच्चों को स्कूलों में घसीट घसीट कर डरा धमका कर लाया जा रहा है। नहीं नहीं, शिक्षा का ये रूप तो बिल्कुल गलत है, एक नया रूप बनाना होगा। उस किशोर ने, यानी कि जॉन डेवी ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में ही टीचर बनना मंजूर किया। बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 साल में ही एहसास हुआ कि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा, दार्शनिक बनना होगा, तभी बड़े पैमाने पर लोग बात सुनेंगे और सुधार करेंगे। स्कूल की पक्की नौकरी छोड़कर जॉन डेवी उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में चल पड़े।
शिक्षा सुधार के तमाम सुझावों प्रयासों के साथ उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम अनुभव से नहीं सीखते, हम अनुभव पर चिंतन करने से सीखते हैं। शिक्षा खुद की कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि क्रिया के चयन के माध्यम से बहती हुई हमेशा बहने वाली चीज है। शिक्षा की दुनिया में उनका नाम गूंजने लगा। वो उसी कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाते थे जहां पढ़ने के लिए भारत से भीमराव अंबेडकर जी गए थे। पूरे 2 साल जॉन डेवी ने अंबेडकर को अपने पास रखा और सिखाया कि शिक्षा ही लोकतंत्र की नींव है। बहुत प्यारे स्वभाव के प्रोफेसर जॉन डेवी की शिक्षा अंबेडकर के बहुत काम आई। अंबेडकर ने बार बार माना कि उन्हें बनाने में जॉन डेवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी अंबेडकर याद किए जाते हैं, जॉन डेवी जी भी ही याद आते हैं। जॉन डेवी 1859 से 1952 तक कोड़े मारने वाले उन शिक्षकों को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चे, सारे लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक हुए नहीं हैं। शिक्षा अभी भी पूरी स्नेहिल हुई नहीं है। एक दिन आएगा जब दुनिया के सभी स्कूलों में सारे टीचर्स कक्षा में आते ही सीधे पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, बच्चों को कुछ करने के लिए देंगे और बच्चे कुछ कुछ करते हुए सच्ची शिक्षा पाएंगे।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें। पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझा कर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। दोस्तों, किसी भी ऐसी बात को अपने नजदीक भी मत आने दीजिएगा जो आपका मूड खराब करे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे हक हो हमारे उत्साह को कम करने का। तो दोस्तों, खबरदार रहें, चेतावनी है कि किसी भी निगेटिविटी को अपने नजदीक ना आने दें। सुनते रहें।
1: आइए दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो अपने आप में मोटिवेशन का एक स्तंभ बन चुका है। इस गांव से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मध्य प्रदेश का कांकड़ी गांव वैसे तो एक बहुत साधारण सा गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है वो असाधारण है। काकड़ी गांव सतपुड़ा अंचल का एक छोटा सा गांव है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण वहां बनाया गया था। इसमें बस 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं। वो गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब ये गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विस्थापित किया गया। यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए सब तैयार हुए। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना बनाई गई। सभी लोगों ने मिलकर बैठकों में सब कुछ तय किया। योजना के अनुसार जब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए, फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब भी यहां किसी की बेटी की शादी होगी तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद हमेशा आती रहे। पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां के हर घर की छत पर पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे कि भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की, जिससे जैविक अनाज के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फाग राम जी कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने और हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े हैं। ये पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस तरह की पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों और हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का एक तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर रहती है। ये पहल सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की पहल हमारे ही देश में छोटे छोटे गांवों में शुरू हो चुकी है। क्या हमें थोड़ा और जागरूक नहीं होना चाहिए इस बारे में?

दोस्तों, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम पहचाने कि नेगेटिव चीजें हमारी तरफ आए ही नहीं, और अगर वो आए भी तो हम उन्हें अपने पास आने की इजाजत न दें। सावधान रहें दोस्तों, हमेशा खुश रहें, जोश से भरे रहें। आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ।

ना से ही है हां का अस्तित्व। दोस्तों, कभी सोचा है कि सच को कौन पसंद करता अगर झूठ ना होता, या उजाले की इज्जत कौन करता अगर अंधेरा ना होता? बुराई ना होती तो अच्छाई किस कोने में पनाह पाती? दर्द ना होता तो खुशियों की कद्र कैसे होती? धूप ना होती तो छाह में कौन जाकर बैठता? मृत्यु का भय ना होता तो हमारे जीवन का मूल्य कैसे समझते? इन और इन जैसी तमाम मिसालें गिनाने का मकसद यह है कि जब भी हम सकारात्मक चीजों को प्यार और नकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं, तो इस सत्य और तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि नकार से ही सकार की सार्थकता है। अंधेरा प्रकाश को निखारता है, बुराई अच्छाई को मजबूती देती है, दर्द खुशियों को महत्वपूर्ण बना देते हैं। झूठ का होना हमें सच की पहचान, उसका सम्मान सिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की चीजों की पृष्ठभूमि में सुनहरे या पीले की बजाय, अथवा मोती के नीचे सफेद या रुपहले की बजाय स्याह गहरे रंगों के कागज या कपड़ा रखने से वो और ज्यादा चमक बिखेरने लगते हैं। लेकिन जीवन हमें सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही सार्थक बनाना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में झूठे ना होते तो सच्चे किस बात पर इतराते, बुरे ना होते तो अच्छे किस बात का गुरूर करते। हर नायक को लोकप्रियता पाने के लिए एक अदद खलनायक की जरूरत तो होती है। हर शय अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अपना खलनायक चुन लेती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक की परिभाषाएं बहुत संकुचित हैं। मोटे तौर पर जो चीजें हमें सुख शांति और लाभ दें वे हमारे लिए सकारात्मक हैं, और जो कष्ट दें हानि पहुंचाएं वो नकारात्मक। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक में भी सुख पाते हैं और बहुत से लोग सकारात्मक चीजों से भी कष्ट का अनुभव करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दो सापेक्ष चीजें हैं और दोनों की ही अपनी अपनी समयानुसार उपयोगिता है। कई बार हमें उजाले से ज्यादा अंधेरे की जरूरत महसूस होती है। कई बार हम सच की जगह झूठ बोलकर बहुत सी संभावित समस्याओं से बच जाते हैं। कई बार हमें छांव की बजाय धूप का होना ज्यादा उपयोगी लगता है। एक ही बारिश कहीं जीवन का संदेश लेकर आती है, कहीं प्रलय का कारण बन जाती है। जिस कुएं से लोग प्यास बुझाते हैं उसी कुएं में कोई अपनी जान दे देता है। लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक तो वही है जिस रूप में प्रकृति से हमें मिला है। हम ही हैं जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपने अनुरूप या प्रतिकूल मान लेते हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि नकारात्मकता हमें स्वतः मिलती है। हमें उसे और कहीं से प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, उसे दूर करने के लिए प्रकाश के स्रोत रचते हैं। खुशियों की तलाश में हम ताजिंदगी जतन करने में लगे ही रहते हैं, लेकिन दुख खुद ब खुद हमारी राह में आ जाते हैं। अपनी परिवेश को सुगंध से भरने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर ही लेती है। जिस समय हम जीवन में सिर्फ सकारात्मकता चाहते हैं, उस समय जीवन को उसके अधूरेपन के साथ प्राप्त करते हैं, प्रकृति के नियम का निषेध करते हैं। जबकि सच तो यह है कि नकारात्मकता जीवन को संपूर्णता देती है, हमें उसका सम्मान करना सिखाती है। हम नकारात्मकता से कितना ही दूर भागें, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था निर्मित की है कि वो हमें नकारात्मकता को अनदेखा करने ही नहीं देती। जैसे कि कोई मां ये पसंद नहीं करती कि कोई उसके एक बच्चे को दुलार करे और दूसरे का तिरस्कार करे, प्रकृति भी हमारे सामने सकारात्मकता के साथ हमेशा नकारात्मकता परोसने में कभी कंजूसी नहीं करती। इसी व्यवस्था के कारण हम सकारात्मकता को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं वो उतनी ही अस्थायी हो जाती है, जबकि नकारात्मकता
ज्यादा स्थायी और निश्चित होती है। सोचिए कि जीवन में ज्यादा सकारात्मक क्या हो सकता है, लेकिन मृत्यु कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसका अंत कर ही देती है।

दोस्तों, खुश रहना, उत्साहित रहना, जोश से भरे रहना हमारे अपने हाथ में है। हम ये हक किसी और को कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे मूड को जब चाहें बदल दें? नहीं, हमारा मूड हमारा है, हम जोश से हमेशा भरे रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं हूं आपका दोस्त समीर, बने रहिए मेरे साथ। मौन का महत्व। अंग्रेजी में इस कहावत को कि स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन को प्रथम दृष्टया आत्मसात कर पाना जरा कठिन ही है। इसकी वजह यह है कि एक ऐसी दुनिया जहां शब्द, भाषा, वाक्य चातुर्य एक निरंतर फलते फूलते उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित है, हम खामोशी की हिमायत भला किस आधार पर कर सकते हैं? लेकिन हमारी संस्कृति में भी एक चुप सौ को हरावे की अवधारणा में विश्वास व्यक्त किया गया है। आखिर क्या है इस चुप्पी का रहस्य जो इसे शब्दों से ज्यादा ताकतवर और मूल्यवान बनाता है? मुझे चुप रहने वाले लोगों का भी सानिध्य मिला है और बड़बोलों का भी, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़बोले ज्यादा से ज्यादा आपकी खीज की वजह बन सकते हैं, लेकिन खामोश रहने वालों की चुप्पी आपको तरह तरह से तकलीफ देती है, अपमानित करती है। यूं ही नहीं कहते कि समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार यह इतना लाउड हो जाती है कि आपके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। दरअसल शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, मुंह से निकलने के बाद आप उनके दो तीन से ज्यादा अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन खामोशी अपने आप में असंख्य अर्थ लिए रहती है।

आप इन अर्थों की भूल भुलैया में उलझकर अपना सुख चैन सब खो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शब्दों को ऊर्जा नाहक ही कहा जाता है, खामोशी में तो उनसे ज्यादा ऊर्जा भरी हुई होती है। यूं भी कह सकते हैं कि शब्दों में अगर एक चिंगारी जितनी ऊर्जा है तो खामोशी में अणु जितनी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों ही का सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे संजीदा हालात तब पैदा होते हैं जब दोनों आमने सामने आते हैं। कई बार शब्दों को परास्त करने के लिए खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार खामोशी को काटने के लिए शब्दों का। राजनीति को ही लीजिए, एक वक्त नेता बोलता है जनता चुपचाप सुनती है, तो एक वक्त जनता बोलती है और नेता को चुपचाप उसकी बात सुननी पड़ती है। खामोशी और शब्द एक ही तराजू के दो पलड़े हैं जो वक्त की नजाकत के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि अगर दुनिया को दोनों में से किसी एक को अपने लिए चुनने को कहा जाए तो उसके लिए क्या बेहतर होगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि प्रकृति ने मौन और कोलाहल दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करके रखा हुआ है। जैसे कि नदियां शोर मचाती हैं, सागर शांत रहता है, बादल गरजते हैं, आकाश अपने मौन व्रत पर अडिग रहता है, पत्तियां खड़खड़ाती हैं, वृक्ष चुप्पी साधे रहते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि खामोशी विशालता की द्योतक है? ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि विशालता चुप्पी की शर्त है या चुप्पी विशालता की जरूरत। पर जहां तक जीवित प्राणियों का संबंध है तो मेरा विचार यह है कि मौन हमारा नैसर्गिक गुण नहीं है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हर क्षण उसका एहसास कराने के लिए शब्द भी दिए हैं, ध्वनियां भी दी हैं। हम बोलने के लिए बने हैं, मौन हमें ओढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि खामोशी का कोई मतलब नहीं। शब्द और ध्वनियां हमें हमारे परिवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो खामोशी हमें अपने भीतर ले जाने का काम करती है, आत्म साक्षात में हमारी मदद करती है। ध्वनियां और मौन दोनों का अपना अपना महत्व है। खामोशी अगर अप्रिय स्थिति से बचाती है तो संवाद उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगर आप इलाज से परहेज बेहतर वाली सोच के कायल हैं तो खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि दोनों की ही अधिकता समस्याओं का कारक बनती है, इसलिए दोनों के मध्य एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेश खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

है तुम्हारा नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं, उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हाँ, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान और शायर हमारे साथ हैं वो हैं सैयद नजम इकबाल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों से, हमारे ऑडियंस से मुखातिब हों और अपना परिचय दें।
1: नमस्कार, तो मैं सैयद नजम इकबाल, मैं एक छोटा सा इंसान, अपना सा खादिम, साहित्य का सदस्य, मैं बेसिकली बिहार से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा आबाई वतन जो है जिला कटिहार है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और पढ़ाई की, इब्तदाई तालीम नहीं हासिल की, उसके बाद चचा के पास झारखंड चला गया, वहां से आगे की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट करने के बाद दिल्ली आया।
0: बेहतरीन सर, बेहतरीन। सैयद सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना पहला कलाम जो कि नज्म हो सकती है या गजल हो सकती है वो हमें सुनाने की कृपा करें।
1: एक मेरी प्यारी गजल है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और दोनों भी बहुत मोहब्बतों से नवाज है।
0: जी सर,
1: थोड़ा मकबूल भी है ये गजल, दोनों भी बहुत पसंद है।
0: जी,
1: मैं हासिल करता हूँ आपकी खिदमत में दोस्तों।
0: इरशाद सर,
1: मतलब हाजिर है कि किस दिल में होती है कुछ दर्द सिवा हो जाता है।
0: वाह वाह।
1: एक किस दिल में होती है कुछ दर्द सिवा हो जाता है, जब तस्वीर करता हूँ जख्म भरा हो जाता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन।
1: तस्वीर करता हूँ जख्म भरा हो जाता है।
0: बहुत सुंदर।
1: क्या जामिये मेरे किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने, क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने, मैं जिस मोहब्बत करता हूँ वह मुझसे खफा हो जाता है।
0: वाह वाह।
1: जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है।
0: बहुत खूब।
1: अगला शेर हाजिर करता हूँ। वो शेर है, एक किस्सा है, कहानी है, वो सच्ची कहानी आप सबको पहुँचाता हूँ।
0: जी,
1: नाज़रीन और हाजरीन जो भी है उनको सबको समझ में आ जाएगा कि ये किस्सा क्या है।
0: जी,
1: तो तवज्जो चाहूंगा आपसे।
0: ऐसा
1: तकदीर भी गुम हो जाती है, तकदीर भी काम आती ही नहीं।
0: वाह।
1: तकदीर भी गुम हो जाती है, तकदीर भी काम आती ही नहीं, चल जाती है सोने लंका जब वक्त बुरा हो जाता।
0: क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन।
1: जाती है सोनी की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है।
0: बहुत खूबसूरत,
1: बहुत शुक्रिया। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की।
0: जी,
1: मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की, जब उनके दस्ते नाजुक से तीर खता हो जाता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: उनके दस्ते नाजुक से जो तीर फता हो जाता है।
0: बेहतरीन,
1: बहुत शुक्रिया। अगला शेर हाजिर करता हूँ, वो शेर है पूरी गजल में, ये पहला शेर हुआ था जिसकी वजह से पूरी गजल की तकलीफ की गई। ये वो शेर है कि मेरे दिल के बहुत बेहद करीब है
0: जी,
1: समाज पे एक चोट है, आईना दिखाने का काम करता है, कैसे चलता है ये हाजिर करता हूँ आप सबके साथ।
0: जी इरशाद।
1: रुख पे नकाब उनके आधा करते हैं हिजाब सर आधा, रुख पे नकाब उनके आधा करते हैं हिजाब सर आधा, और भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और ता भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अगला शेर ये दोस्तों को नजर कर रहा हूँ मैं, सबसे दोस्त कौन हो, हमारी जिंदगी में हर किसी के दोस्त होते हैं
0: जी,
1: उन तक पहुँचाता हूँ। देखिए कैसे दोस्त जो है दूसरे का साथ देता है वो हाजिर
0: जी।
1: जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से
0: जी, बहुत सुंदर।
1: जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से, जो बात मैं उनसे कहता हूँ वैरों को पता हो जाता है।
0: जो मैं बात उनसे कहता हूँ,
1: कहता हूँ वैरों को पता हो जाता
0: है। क्या बात है, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया। अब नुकता हाजिर करता हूँ
0: इरशाद।
1: किस्मत में सुनील भाई, असल मेरे नाम का जो मतलब है मैनेजमेंट के लिए, इंतजाम के माने इंतजाम के होता मैनेजमेंट, तो अपने तसल्लुस को किस तरह से बयां करता है शायर, आया करता है
0: जी,
1: मक्के में वो हाजिर करता हूँ, देखिएगा
0: जी,
1: अपनी मीनिंग रखिएगा जहन में अपनी
0: जी जी जी।
1: है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा
0: जी,
1: है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा, किस्मत पलटते ही पासा होता भी खरा हो जाता।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है।
1: कपलटते पासा होता भी खरा हो जाता है।
0: बेहतरीन,
1: बेहतरीन,
0: बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: बहुत
0: सर समा बंध गया, मजा आ गया। कई कई भावनाओं में, कई अलग अलग रंगों में गोते लगवा दिए आपने सर, मजा आ गया। दोस्ती का रंग भी दिखाया और बाकी एक इंसान से दूसरे इंसान की आत्मीयता और संबंधों को भी बताया, बहुत खूबसूरत। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि आपने सुनने वालों के लिए आपकी पसंदीदा गायक की कोई गजल बताएं जो हम उन्हें सुनवा दें।
1: देखिए मैं बहुत करीब है, वो गुलाम अली साहब ने गाया है, हम हमको किसके
0: गम ने मारा। ओहो क्या बात है, क्या बात है, ये कहानी फिर कही
1: जी,
0: बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत गजल है। लीजिए दोस्तों, सैयद सर की आदेश पर, सैयद सर की फरमाइश पर आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ गुलाम अली साहब की गाई हुई ये बेहद खूबसूरत गजल।

0: सैयद सर, अगला सवाल बहुत ही छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
1: जी समीर भाई बताइए।
0: फर्ज कीजिए आपको एक जिन्न मिल जाए जो आपको तीन ख्वाहिशें पूरे करने की बात कहे, वो तीन ख्वाहिशें आप क्या मांगेंगे?
1: तो पहला कि मुझे बचपन में ले जाए
0: जी
1: और मेरी शादी को मेरे साथ रखे।
0: बेहतरीन,
1: ये एक है पहला
0: जी।
1: दूसरा ये है कि दुनिया से नफरत मिट जाए
0: जी,
1: हर तरफ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत मिल जाए।
0: क्या बात है,
1: इसका एक ही धर्म हुई इंसानियत, और जिसको मानने वाले को मोहब्बत का रिश्ता कहें
0: जी।
1: ये दूसरी ख्वाहिश है। तीसरी ख्वाहिश है कि जो हमारे आज

0: समाज जो गुर्बत है समाज में, जब गरीबों को देखता हूँ, मैं सच में बताऊँ बहुत इमोशनल आदमी हूँ, अब जा
1: जी
0: पहले मजदूर नहीं हूँ, मैं भी गरीब ही हूँ, तो मैं अपने आप को उस गरीब में देखता हूँ। ये गरीब जो है उसको जो है कूड़ा बीनने पर मजबूर हो रहा है, कबाड़ उठाने पर मजबूर हो रहा है
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें हट जाए और जीने लायक तीनों टाइम खाना मैसर हो, शुद्ध पानी मैसर हो, और अगर वो चाहे कि थोड़ा सा जिंदगी में फल फ्रूट भी खा सके, हम सुबह के टाइम में जैसे आम लोग खाते हैं वो खा सकें, तो ये मैं चाहूंगा कि हम लोग की जिंदगी।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, एक सच्चे शायर की तरह आपने बिल्कुल सही फरमाइशें, सही गुजारिशें उस जिन्न से फरमाई, और मैं दुआ करूंगा उस जिन्न को ढूंढ के लाऊंगा कि आपकी ये फरमाइशें वो पूरी करे।
0: देखिए कोई जिन्न को पूरा करता नहीं है, सब अल्लाह की अता है।
1: जी जी,
0: अल्लाह ही अता करता है। लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन था
1: जी,
0: चलिए आप उनको जिनके अक्स में मैं फरिश्ते के तौर पे देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने
1: जी
0: हाँ भेजा हो कि जाओ पूछो मेरे बंदे से कि क्या चाहिए उसे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैयद साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाए, जिससे वो खुशी हमें मिल सके जो तमाम दूसरे श्रोताओं को हमेशा मिलती रही है।
0: जी जी जी, मैं एक प्यारी सी गजल पेश कर रहा हूँ
1: जी,
0: मतलब हाजिर करता हूँ सनी भाई। हाजिर आप लोग एक एक मिसरे में एक एक शेर में आप लोगों की खास तवज्जो दिखाऊंगा।
1: इरशाद सर, इरशाद।
0: देखिए बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी सरल भाषा में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ हमेशा
1: जी,
0: शब्दों का जो है इस्तेमाल नहीं किया मैंने। मैं चाहता हूँ कि मेरे कलाम या मेरी बातें, शायर की बात जो है आम आवाम तक बहुत सरलता से पहुंचे और किसी को भी मुगार लेके बैठने की जरूरत है, यही है सोच हमेशा। चलिए हाजिर करता हूँ।
1: इरशाद सर, इरशाद।
0: इसे जो उससे जो तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, इसे जो तलाश में

0: लेता मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम से बिखर गए
1: वाह
0: इस जो

0: मेरा हाल क्या कहूँ।
1: वाह,

हूँ तुझे मैंने देखा है चार सू, तुझे मैंने देखा है चार सू,

0: بہترین.
1: بہت شکریہ. ہے یہ شکر تیرا میرے سنم تم نے کیا.

करम जो अता किया मुझे अपना गम जो अता किया मुझे अपना

0: वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। तेरा सबसे आला शबाब है, तेरा अब कहीं ना जवाब है।
0: क्या बात,
1: तेरा सबसे आला शबाब है, तेरा अब कहीं ना जवाब है। तेरा चेहरा मिसल गुलाब है, तेरा चेहरा मिसल गुलाब है, मेरी रूह खुशबू से भर गई उस दोस्त जो तलाश में।
0: बेहतरीन, बहुत खूबसूरत।
1: अब अगला शेर हाजिर करता हूँ, और ये वो शेर है जो मेरे दिल के बेहद करीब है, आप तक पहुंचाता हूँ।
0: इरशाद।
1: मैं शराबे इश्क में चूर था, तुझे भूलना भी फिजूल था। मैं शराबे इश्क में चूर था, तुझे भूलना भी फिजूल था। मिल ठोकर मुझे इस कदर, मिल ठोकर मुझे इस कदर, जो चढ़ी थी सारी उतर गई जो तलाश में, मेरी उम्र सारी गुजर गई। मैं कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई इस दोस्त जो तलाश में।
0: बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। अब मक्का हाजिर करता हूँ। मेरे हम नवा मेरे हम सफर, ये था नज़्म प्यार से बेखबर। मेरे हम नवा मेरे हम सफर, ये था नज़्म प्यार से बेखबर। तेरा साथ जब से मिला सनम, तेरा साथ जब से मिला सनम, मेरी जिंदगी तो सवर गई किसी दोस्त।

0: डालता, ये कदम कदम पे बिखर गए।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, बेहद बेहद खूबसूरत। ऐसा लगा बीच में तो कि अधिक ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा बीच में कि सांस लेना भूल गया। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, डूब गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ही पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हमारे सुनने वालों को मैं सुनवा सकूं।
0: एक गजल है, मेहंदी हसन साहब ने गाया है, प्यारी गजल है, रंजिश ही सही दिल को दिखाने के लिए।
1: रंजिश ही सही, मेहंदी हसन साहब की गाई हुई बेहतरीन गजल। लीजिए दोस्तों, आपके लिए पेश खिदमत है सैयद साहब के हुक्म पर।

0: सैयद साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही एक छोटा सा मासूम सा सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे
1: जी भाई।
0: कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे सर?
1: देखिए, शुरुआती दौर में तो पायलट की ख्वाहिश हुई।
0: क्या बात है।
1: लेकिन जब मैंने साइंस के करीब पहुंचा, नाइन्थ में पहुंचा, तो मेरे ख्वाब बदल गए।
0: जी,
1: बनना चाहता था एक आईएएस ऑफिसर।
0: जी,
1: वो आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहता था कि आईएएस के पास बहुत पावर्स होते हैं।
0: जी,
1: वो शब्द एक जिले का मालिक होता है, जिले में जिसको चाहे वो कुछ भी बना दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी दे दे, वो वहां का राजा होता। तो ये परसेप्शन था मेरे जहन में, ये बात थी। तो मैं यही चाहता था कि मतलब ये अपनी इसलिए बता रहा हूँ कि सेंसिटिविटी अपनी आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त के जो समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, ये चीजें ना, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पाटने की कोशिश करें उसकी। तो इसलिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन वक्त को कुछ और में था और आप देख ही रहे हैं अभी क्या हूँ।
0: अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए होते तो क्या पता हमें आज के सैयद साहब से मुलाकात होने का मौका ना मिलता। तो ये तो यूं देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि आज हमारी आपसे बातचीत हो पा रही है, आप हमारे सुनने वालों के मुखातिब हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको अपने कलाम सुना रहे हैं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये आईएएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एक आम आदमी की पहुंच से तो दूर हो जाते हैं। ना इनसे बात की जा सकती है, ना इनसे पूछा जा सकता है, ना अपनी शिकायतें इन्हें बताई जा सकती हैं। कम से कम आप हमारा दर्द बांटते हैं, अपनी बातें हमें बताते हैं, हिम्मत देते हैं। सैयद साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आपसे गुजारिश है कि अपना एक और कलाम हमें सुनाए।
1: चलिए, मैं वो कलाम सुनाता हूं जो ये पूरी कहानी जो है वो मेरी।
0: जी वाह,
1: है तो गजल ये।
0: जी जी जी,
1: लेकिन आप एक एक शेर में मेरी कहानी जो फरक दर फरक हर शेर में हर दूसरे में आपको महसूस होगा कि अगर मेरी कहानी आपने अब तक कुछ हद तक सुनी और समझी और जो मैं बता रहा हूँ उसके जरिए आपके जहन में आई वो बात, तो ये वो फजल है, मेरी पूरी कहानी उसमें गया।
0: क्या बात है इरशाद सर,
1: हाजिर करता हूँ
0: इरशाद सर।
1: गम कर दार तो अपना भी कभी आएगा।
0: वाह,

0: और तो अपना भी कभी आएगा, वक्त वक्त है रोज
1: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: जाएगा
1: बदल जाएगा।
0: गर्द की तहन दबे रहन दे एहसास मेरे, दर्द की तहें दबे रहें दे एहसास मेरे, ये उभर आए तो हर जख्म भर
1: ओहो वाह वाह,
0: आएगा, ये उभर आए तो हर जख्म भर
1: ब्यूटीफुल बेहतरीन।
0: क्षमा कोई भी तो रोशन तेरी खातिर होगी, क्षमा कोई भी तो रोशन तेरी खातिर होगी, कोई सूरज तेरी दुनिया में सहर लाएगा,
1: वाह वाह वाह, सैर लाएगा।
0: सूरज मेरी दुनिया में सहर
1: बेहतरीन।
0: लाएगा। ये समीर भाई गैर मुरब्बी गजल है, इसमें रदीफ नहीं, सिर्फ काफिया चाफिया बंदी है।
1: क्या बात है,
0: इसलिए इसलिए काफिये पे जहन लगाए, रदीफ बिल्कुल है ही नहीं।
1: जी
0: करता हूँ
1: जी जी
0: तेरा हमदर्द कभी नाज करेगा तुझ पर, तेरा हमदर्द कभी नाज करेगा तुझ पर, तेरा हाथ दिल तो तेरे नाम से जल जाएगा,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: तेरा हाथ दिल तो तेरे नाम से जल जाएगा, हर सितम सोच के मैं

0: यूं ही सह देता हूँ
1: जी।
0: अपनी फितरत पे सितमगर जी तो पछताएगा।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: फितरत पे सितमगर जी तो पछताएगा।
1: वाह वाह।

0: तेरा किरदार एक दिन रब के दरबार में जब शाम सहर जाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रब के दरबार में जब शाम सहर जाएगा।
1: ब्यूटीफुल।
0: अब देखिए इख्तिताम किस प्रकार होता है, किस तरह होता है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि किस लिए यार भला माइल दुनिया है तू,
1: वाह।
0: किस लिए यार भला माइल दुनिया है तू, कोई तकदीर से बढ़कर भी कभी पाएगा।
1: आह, क्या कह दिया।
0: तकदीर से बढ़कर भी कभी पाएगा। अब मकसद हाजिर करता हूँ भाई।
1: इरशाद।
0: फलसफा नज़्म जो उल्फत का सुनाया है दीन, फलसफा नज़्म जो उल्फत का सुनाया है दीन, एक दिन तू भी इसी और को समझाएगा। और तो समझाएगा।
1: बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। क्या कह दिया साहब, क्या कह दिया। मजा आ गया सुनकर, बहुत खूबसूरत। तो सैयद साहब, अपनी पसंद की, अपने पसंदीदा गायक की कोई गजल बता दीजिए जो हम अपने दोस्तों को सुनवा दें।
0: ये एक गजल है कि जगजीत सिंह साहब की गायकी गजल है
1: जी।
0: रखना मत रखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: वाह, क्या बात है।
0: ये गजल है,
1: परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता,
0: कोई अपना नहीं रहता।
1: जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना है अपने को।
0: बशीर बड़ी साहब की लिखी है,
1: बहुत खूबसूरत। आइए दोस्तों, सैयद साहब के हुक्म पर जगजीत सिंह साहब की गाई हुई ये गजल पेश कर रहा हूँ।

0: मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल या नज्म हमें सुनाएं।
1: एक नाजुक सी गजल है, मतलब हाजिर है कि
0: इरशाद।
1: कभी जो धोने से दिल भर चमन में आए हैं, कभी जो भूलने से दिल भर चमन में आए हैं, कभी जो भूलने से दिल भर चमन में आए हैं।
0: क्या बात है।
1: नामी देने को गुलचों में सर झुकाए हैं, सलामी देने को गुलचों में सर झुकाए हैं, सलामी देने को गुलचों में सर झुकाए हैं। बाहर आई है जब आप मुस्कुराए हैं,
0: ब्यूटीफुल, बहुत
1: बाहर आई है जब आप

0: आप मुस्कुराए हैं, गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं, गुलों
1: वाह वाह,
0: के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं, गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं, मेरे ख्याल में किस तरह वो समाए हैं,
1: ब्यूटीफुल।
0: मेरे ख्याल में किस तरह वो

0: रहा है उनको तो याद आए हैं, बुलाना चाहा है उनको तो याद आए हैं, बुलाना चाहा है उनको तो याद आए हैं।
1: देखिए अगला शेर है, बहुत खूबसूरत, मेरे दिल के बहुत करीब है ये शेर, मैं बहुत पसंद करता हूँ, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आए
2: जी।
1: देखिए तवज्जो चाहूंगा
2: जी। इरशाद,
1: सबाने देखिए ये कैसे जुल्म उठाए हैं, सबाने देखिए ये कैसे

0: मुझे जिनसे परेब खाए हैं। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत बेहतरीन, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। सैयद साहब आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके कलाम, आपकी शायरी, आपकी नज़में, आपकी गजलें सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: आपका भी शुक्रिया भाई।
1: सर आपसे बातचीत करके जो मुझे मजा आया है, मुझे उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी उतना तो मजा नहीं आएगा जितना मुझे आया, लेकिन फिर भी आपकी आवाज सुनकर उनको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। खसम खास जो गजलें पसंद करने वाले लोग हैं और इस एरिया में, इस कला की इस जगह में दखल रखते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या सुन रहे हैं हम और क्या क्वालिटी है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया सुमित भाई, बहुत आभार आपका कि आपने इस लाइफ समझा जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात, अपनी गजलें, अपनी सोच, अपने ख्याल और हमारे जज्बात और हमारे ख्वाब के बारे में आप सबके सामने लाने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे। और कार्यक्रम लेकर आए हैं हम, कार्यक्रम का नाम है खेती बाड़ी कार्यक्रम और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें। इस कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, उन मंटों पर बात करते हैं जो हमारे खेती किसानी में हमारे किसान साथियों के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अभी चूंकि खेती किसानी में हमारे किसान साथी घर पर बैठे होंगे क्योंकि सीमित उनके पास जमीन है और उन्होंने खेती वो कर अपनी उत्पादन लेकर अपने घर पर बैठे हुए हैं। अब अपने हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में, तो किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत लेकर आए हैं, यानी टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, चूंकि पथरीला इलाका है, पानी कम है, किस तरीके से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं और अपने खेत की आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके के बीज लगने होंगे और किस तरीके के मौसम की जरूरत होती है और किस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है, इस बात पर हम जिक्र करेंगे आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो उनके आय को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती हैं। हम और आप देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसान साथी चूंकि हम और आप देखते हैं कि सीमित उनके पास जमीन है, पथरीला इलाका है, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, ऐसे में कम पानी वाली फसलें का भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, साथ साथ में केबी है वहां पर जाकर भी संपर्क करना होगा, तब जाकर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर हम अपने किसान साथियों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे और साथ साथ में आप उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम नर्सरी पर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ में अगर जैविक पद्धति की बात करें, क्योंकि जैविक खेती करना ये अब धीरे धीरे अब हमारे किसान साथियों के जहन में आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी जो खेत खाली पड़े हुए हैं उनकी जुताई कर लें, जुताई के साथ साथ जो पराली रहती है पराली जलाए नहीं, आप उससे खाद उत्पादन कर सकते हैं और खाद से जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उनसे भी अपने आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लागत जब कम लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि होगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसान साथियों को टमाटर की नर्सरी किस तरीके से लगा सकते हैं उस पर जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, विषय विशेषज्ञ के पास आपको ले चलेंगे। लेकिन इस जानकारी से पहले आपको करा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से भीली गीत के साथ, बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आप रेडियो आप ही बात है।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से, हमारे विषय विशेषक से, किस तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं टमाटर की, क्योंकि बहुत महंगा टमाटर चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, नर्सरी करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषक की इस चर्चा को।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है। तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे, तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें, तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90

0: ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई है जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है अभी नई नई निकाली है काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं, पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं, हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें, बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें।

0: कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना।

रेडियो टांडा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और मित्रों, कैसे हैं? आपने जानकारी पाकर हमें आशा है कि हमारे किसान साथी जरूर अपने खेतों में नर्सरी लगाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पथरीला इलाका है तो हमारे किसान साथी सब्जी भी लगा सकते हैं, साथ साथ में नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी थोड़ा देना चाहते हैं, टमाटर से जुड़ी है, क्योंकि टमाटर उगाने के लिए जलवायु परिस्थितियां किस तरीके की होनी चाहिए, पुष्पन एवं फल बनने के लिए भारी बारिश बादल नुकसानदायक है क्योंकि यह फूलों और फलों को गिरने का कारण बनता है। ये पौधे पाला और अधिक नमी के सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक नमी के कारण फल सड़ जाते हैं। फल उगने बनने के समय तेज धूप के कारण गहरे लाल रंग के फल विकसित होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी पड़ रही है तो ऐसे में किसान साथी कर सकते हैं अपनी खेती को लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं। तापमान की अगर बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के कारण पौधे का विकास रुक जाता है। यदि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो फलों का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से विकास रुक जाता है। टमाटर के लिए आदर्श तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टमाटर की फसल में पानी की आवश्यकता आमतौर पर सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले टमाटर उगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का साथ ड्रिप सिंचाई की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी अपने कृषि विस्तार अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं उस पर भी अपन ध्यान केंद्रित कराएंगे। फसल में पानी की आवश्यकता 600 से 1500 मिलीलीटर वर्षा के बराबर होनी चाहिए और उचित मिट्टी की अगर बात करें तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आवश्यक स्तर 6.0 से 7.5, यदि पीएच आपका 6.0 है तो चूना डालें, यदि पीएच 7.5 है तो जिप्सम डालें उसमें, तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में आइए एक और गीत को सुन लेते हैं और इसके बाद हम किसान साथियों के लिए बताएंगे कि इस तरीके से बर्मी कंपोस्ट हमारे किसान साथी कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडा व्हील 90.8 एफएम। आप रेडियो अपनी बात है।

रेडियो टांटिया भी 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से भीली गीत को सुना, भीली गीत का आनंद लिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे किसान साथियों की खेत खाली है तो अभी क्या कर सकते हैं, वर्मी कम्पोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, पशु मल, मूत्र एवं पत्तियों के डी कम्पोस्ट की विशेष प्रजाति के केचुआ के सहयोग द्वारा कम्पोस्ट में बदला जाता है। यह प्रतिक्रिया पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु के साथ साथ किसानों के लिए अति उपयोगी है। वर्मी कम्पोस्ट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से सुधार होता है। इस प्रकार वर्मी कम्पोस्ट भूमि की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाऊ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुमानतः 1 किलोग्राम भार में 1000 से 1500 केचुआ होते हैं। प्राय 1 केचुआ 2 से 3 कोकीन प्रति सप्ताह पैदा करता है। तत्पश्चात हर कोकीन से 3 से 4 सप्ताह में 1 से 3 केचुआ निकलते हैं। 1 केचुआ अपने जीवन में लगभग 250 केचुआ पैदा करने की क्षमता रखता है। नवजात केचुआ लगभग 6 से 7 सप्ताह तक प्रजननशील अवस्था में आ जाता है। प्रतिदिन 1 केचुआ लगभग अपने भार के बराबर मिट्टी खाकर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोग्राम केचुआ 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 45 किलोग्राम अपघटनशील पदार्थों में से 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट

60 से 70 दिनों में तैयार कर देते हैं। अब इसकी बर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले केंचुआ का चयन करना चाहिए। केंचुआ का चयन कैसे होता है? बर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र हो, प्राकृतिक तापमान के उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो व कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए आइसिनिया, फीडिया और यूडिलियस यूजिने व पेरोसिक्स उन्नाव जनपद के आसपास के क्षेत्रों में आइसिनिया फीडिया बर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। बर्मी कंपोस्ट योग्य पदार्थ जो रहते हैं, इस प्रक्रिया के लिए समस्त प्रकार के जैव क्षतिशील कार्बनिक पदार्थ जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर व मुर्गियों आदि का मल, बायोगैस सलरी, शहरी कूड़ा, प्रायोगिक खाद्यान्न व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, आपको पता होगा फसल अवशेष अभी है, घास फूस व पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें चुनाव कैसे करें? स्थान का ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां छप्पर की छाया या टीन का सेट, कंक्रीट छत का प्रबंधन करने की सुविधा हो, साथ ही तापमान, वर्षा, अन्य शत्रु जैसे कि चूहे, छिपकली, सांप, नेवला और पंछियां जो रहती हैं उसका प्रबंधन तय हो। बेड बनाना यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बर्मी कंपोस्ट बनाने के कई तरीके रहते हैं। किसान अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार उचित विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर किसान मुख्यतः एक विधि से बेड बनाते हैं जिसमें बेड बनाने के लिए 10 फीट लंबाई तथा 3 से 4 फीट चौड़ाई और 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई के आकार की पक्की ईंटों का बनाना चाहिए जिसे सीमेंट से जोड़ा जा सकता है और ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपोस्टिंग किसी भी प्रकार के पात्र जैसे मिट्टी या चीनी के बर्तन, बांस, बेसिन, लकड़ी, बक्से, सीमेंट टैंक आदि में किया जा सकता है। गड्ढों व बेड की लंबाई चौड़ाई उपलब्ध स्थान के अनुसार निर्धारित करें जिसकी गहराई व ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें। कंपोस्टिंग के लिए सबसे नीचे सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे यानी घास फूस, केले के पत्ते, नारियल के पत्ते, फसलों के डंठल की तह बिछाएं। इसके बाद इसे तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और पानी का छिड़काव 1000 से 1500 केंचुआ प्रति मीटर की दर से छोड़ दें। इसके ऊपर सड़ा गोबर और विभिन्न व्यर्थ पदार्थ जिसके खाद बनाना चाहते हैं आंशिक रूप से सड़ाने के बाद डालें और इसे टाट व बोरी से ढक सकें। इस पर पानी का प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें ताकि नमी का स्तर 40% से ज्यादा रहे। कंपोस्टिंग हेतु छायादार स्थान का चुनाव करें जहां पानी का ना ठहरता हो। बेड की भराई करना प्रथम स्तर रहता है कि बने हुए बेड में सबसे नीचे 3 इंच मोटी ईंटों की टूटे हुए टुकड़ों से या कंक्रीट की तली बनानी चाहिए और उसका 1 से 2 इंच ढाल रखना चाहिए। उसमें एक जिस और ढाल है 2 से 3 इंच चौड़ा पाइप लगाना चाहिए जिस तरफ ढाल है। द्वितीय स्तर रहता है जल्दी ना सड़ने वाले पदार्थ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों और सूखी भूसी या प्यार जो रहता है 4 से 5 इंच मोटी बिछा देना चाहिए। 7 दिन पुराने गौमूत्र से अच्छे से भिगा देना चाहिए। तीसरा स्तर रहता है कि द्वितीय स्तर के ऊपर 3 इंच मोटी सड़ी हुई गोबर की परत या गोबर गैस की निकली सलरी बिछाकर पानी में भिगो देना चाहिए। चौथा स्तर रहता है शेष बसी जगह में पशुओं का गोबर भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किसान अगर चाहे तो सब्जी के छिलके, भूसा, घास, पशुओं का बचा हुआ चारा आदि का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। 15 दिन पहले अड़सड़ा हो जिसे केंचुआ खा सके आदि का उपयोग भी हम कर सकते हैं। बेड केंचुआ पर कैसे डालते हैं? बर्मी कंपोस्ट पिट के लिए एक विशेष प्रकार की केंचुए जिसे रेड बर्म कहते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम आइसिनिया फोडिया है, इस पर प्रयोग करने अपने बने बेड में 10, 4 और 2.5
पेट भरे गोबर में 5 किलोग्राम केंचुआ को ऊपरी सतह पर फैला देते हैं और थोड़ी देर बाद केंचुआ सभी पेट में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी सतह पर जूट से बने बोरे का प्रयोग करते हैं और टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहता है उसके अनुसार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर बेड हो उसके ऊपर बरसात और धूप को बचाने के लिए छत और छप्पर होना अति आवश्यक है। बर्मी कंपोस्ट जब खाद बन जाती है उसके कैसे निकालना चाहिए, जब खाद बन जाती है तो उसमें 7 दिन पूर्व से पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। कंपोस्ट को देखने चाय की पत्ती की तरह दिखने लगे और पकड़ने पर चिपकने नहीं चाहिए और बनी खाद में केंचुआ की संख्या कमी और बर्मी में उपयुक्त पदार्थ के गलने के आधार पर खाद को बाहर लेना चाहिए। निकालते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खाद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं और जिससे केंचुआ अपने आप नीचे चले जाते हैं। कंपोस्ट एकीकरण जो साधारणतः 60 से 70 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, इस अवस्था में पानी देना बंद कर दें जिसमें केंचुआ नीचे चले जाए और कंपोस्ट एकत्रित कर छान कर केंचुओं अलग कर दें और छाया में सुखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर सील कर दें। उपयोग एवं उत्पादन कैसे होता, तैयार खाद को कहां उपयोग करना चाहिए इसकी योजना पहले बनानी चाहिए कि आप दलहनी की फसल अगर बोते हैं तो 2 टन बुवाई से पूर्व उसमें डाल देना चाहिए। तिलहनी की फसल में 3 टन रहता है बुवाई से पूर्व। मसाला व सब्जी अगर की फसल लगाते हैं तो 4 टन बुवाई से पूर्व। फूल वाली फसल लगाते हैं तो 5 टन बुवाई से पूर्व। फलदार पौधों का रोपण के समय 5 किलोग्राम या वृक्ष में अपन डालते हैं गमलों में मिट्टी के भार के पर 10%। लॉन में अगर डालते हैं 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट बनाने की विशेष विधि को हमने जाना। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: शराब मारे
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
2: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खासतौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
2: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेतीबाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
3: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
2: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: તાંડિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે. साथियों अभी आपने सुना इस भील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी. तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं. यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी. और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं. तो आइए देरी करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में.
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं. इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं. इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं. इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है. साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का

0: सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करें, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
2: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
0: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है।
3: गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
1: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को, जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
2: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी। सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया ग्याबन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है खासकर राजस्थान की जलवायु है उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो ग्याबन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गायें को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गायें को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि गिर गायें का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
2: तो किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
3: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
5: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
6: किसानों प्रारंभिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है, वो जैविक खेती के बारे में सुना है ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बाजार ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा कौन उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियार वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है, धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
7: राजस्थान में पानी की कमी है,
6: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोले कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरुत खाद जो अपने ह्यूमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं, और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
7: नई
6: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
5: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई हैं। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
6: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल लेने से बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से जैविक के रासायनिक होता है 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते यार आपकी चीज बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी लेते रहते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे ही करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
5: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
4: और साथियों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम बताने देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का, सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
2: तो जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
4: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
2: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
4: और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे झाबुआ जिले में हम आखा तीज का पर्व मना रहे हैं। आखा तीज का पर्व मतलब खेती बाड़ी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं आज से। जो भी अपने गाय बैल बकरी का गोबर खाद होता है, जिसको उकेड़ा बोलते हैं, उसको खेत में डालना शुरू कर देते हैं और खेत की सफाई करना शुरू कर देते हैं। आखा तीज से किसान भाई सभी राड़े और खेत में पड़े हुए कचरे सबको इकट्ठा करके उनको अलग कर देते हैं और अपने खेत को ट्रैक्टर या हल से जोतकर बारिश के मौसम के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को आखा तीज पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने झाबुआ की बात करते हैं तो झाबुआ जिले में आखा तीज का पर्व मनाया जाता है और इसके पहले बच्चे घर घर होड़कड़ी लेकर घूमते हैं और कुछ छोटा मोटा चंदा इकट्ठा करके अपना मनोरंजन करते हैं। और आखा तीज के पर्व के ऊपर सभी घरों में सेवाया बनाई जाती है और जिसको गुड़ में बनाकर आनंद से खाया जाता है। आखा तीज का पर्व हमारे झाबुआ में सदियों से चला आ रहा है। ऐसे में किसान भाई आखा तीज का पर्व मनाकर सेवाया मीठा खाकर उसके बाद अपने खेत को तैयार करना शुरू कर देते हैं। आखा तीज के बाद किसान भाई अपने खेत की तरफ रुझान लेते हैं और देखते हैं कि खेत में क्या क्या तैयारी की जाए, अपने खेत में कौन से ट्रैक्टर से खेत को जोता जाए या बैल से जोता जाए, कचरे पत्थर भी रहता है कूड़ा कचरा, उसको बीन कर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और बारिश के मौसम की तैयारी में आखा तीज के बाद लग जाते हैं। जैसे ही आखा तीज पूरी करेंगे उसके बाद गांव के किसान भाई हल जोतकर या ट्रैक्टर से अपना खेत तैयार करेंगे। और किसान भाइयों, मैं रेडियो टंटिया भील सामुदायिक स्टेशन झाबुआ की आवाज की तरफ से बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी में अपने घर पर हर रोज सुने और उसका पूरा फायदा उठाए। ये कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसमें हम नई नई जानकारी लेकर आते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई घर बैठे अपने रेडियो टंटिया भील सामुदायिक स्टेशन के माध्यम से सुन सकते हैं और नई नई योजनाएं और अपनी खेतीबाड़ी को उन्नत बनाने की और विकास करने में जो भी स्कीम होती है, जो भी योजना होती है और खेती करने का तरीका और अपने खेत में क्या क्या लगाया जाए, बीज दवाई, इसके बारे में हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई हमेशा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो हमारा रेडियो सुनते रहिए और हमसे चर्चा कीजिए। हमारे फोन नंबर है 9425-41-36-03 और हमारा पता है चेतना हाई स्कूल गढ़वाड़ा परिसर झाबुआ। इस पर हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर संपर्क कीजिए। और अभी जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं बिल्ली गाने और बिल्लू गानों का आनंद लीजिए और आखा तीज का पर्व का आनंद उठाइए। किसान भाइयों,
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
1: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
0: आज के कलाकार के प्रोग्राम में दोस्तों आइए फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं और जैसा हम लगातार कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपका है, नए टैलेंट्स का है, नए गायकों का है। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं रविंद्र अकोलकर जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र अकोलकर ही मेरा नाम है सर।
0: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप आए हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए, नए गायकों के लिए। हमें बताइए ना कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए।
2: सर मैं अभी तो पिछले 7 सालों से नागपुर में बेस्ड हूँ। नागपुर जो मध्य भारत का इलाका है, महाराष्ट्र में आता है एंड इट इज लाइक सेकेंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र
0: जी।
2: और बेसिकली मेरा जो वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं अभी करेंटली मैं मेडिकल डिवाइसेस के सेल्स में हूँ, जो ऑप्थेल्मिक जितने भी डिवाइसेस आते हैं
0: जी,
2: डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल्स, तो उसके सेल्स का मैं मेरा काम है सर।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना रविंद्र जी डायग्नोस्टिक्स में हैं, नागपुर में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को रविंद्र जी के ही गाए हुए इस बेहद खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, क्या शुरुआत है, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र जी, यूं ही बस आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डायग्नोस्टिक्स में कोई बच्चा आपकी बात सुनकर इंटरेस्टेड होता है, तो वो आना चाहता है कि डायग्नोस्टिक में अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या सलाह देंगे उसको आप?
1: अगर सर इस फील्ड में वो आना चाहता है, जैसे मैं मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में हूँ,
0: जी
1: तो उसको सर पहले तो जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन की जरूरत है, कि एक उसका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशनल प्रोफाइल रिलेटेड टू बायोलॉजी और साइंस अगर रहे तो ज्यादा अच्छा रह सकता है। थोड़ा बहुत अगर कम्युनिकेशन का पोर्ट मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है सर।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही। दोस्तों, हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन होंगे जो इस तरह के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे होंगे। आप उन्हें सलाह दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके टैलेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया जाए, स्किल को डेवलप कर लिया जाए, तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में अगला गीत।

0: रविंद्र जी, कभी कभी लोग आपके बारे में कुछ गलत फहमी हो जाती होगी उनको, तो ऐसा क्या है जो उनको गलत फहमियां हो जाती होंगी? आपके बारे में सबसे अधिक क्या गलत फहमी रखते हैं लोग?
1: देखिए सर, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मुझे,
0: जी
1: और इसका मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि मैं इंसान हूँ वैसा आपको जवाब
0: ओ
1: दूंगा।
0: प्लीज, ओ
1: क्योंकि जो
0: प्लीज
1: इंसान सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं
0: जी।
1: तो वो होना ही शायद कभी कभी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अरे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, और ये शायद थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और अपनी धुन में खोए रहते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझते। तो आई थिंक ये बेसिकली एक मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो शायद ये ऐसी गलत फहमी हो सकती है, जो मेरे
0: ओके
1: बारे में भी सही है सर।
0: ओके दोस्तों, आपने सुना, रविंद्र जी ऐसे नहीं है, तो इसलिए गौर कीजिएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी दिल की बात कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपके और रविंद्र जी के गीतों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: सर, यादें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं जैसे आपको बताऊं, यादें ऐसी है कि सर मेरा बेसिकली गाने से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो जब मैं अपने चाइल्डहुड में था, तो स्कूल वालों ने मेरे टैलेंट को पहचाना एंड ये मेरे पेरेंट्स को बताया, एंड उसी के कारण मैं आज हूँ कि जो मेरी जो भी आवाज है, जो भी मैंने अभी तक गाया है अपने जीवन में, वो मेरा सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे स्कूल को, सरस्वती शिशु मंदिर जहां मैं पढ़ा, और फिर वहां से मेरी मदर जिन्होंने मेरे को म्यूजिक स्कूल में डाला, और फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख पाया अपने इस सफर में। तो ये एक बहुत बड़ी जिसे मैं याद ही बोलना चाहूंगा जो बचपन की है, जिसके कारण आज मेरे को एक सुकून जो मिलता है तो वो गाना ही है सर।
0: बहुत
1: आज
0: बढ़िया।
1: इतने भागदौड़ के जीवन में और इतने टेंस एटमोसफियर में एक सबसे बड़ा जैसे बोल सकते हैं कि एक योगा जैसा मैं म्यूजिक को मानता हूँ, इट इज नथिंग लेस देन योगा।
0: बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तो रविंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमें कुछ सलाह दीजिए कि हम संगीत को और लोगों के और नजदीक कैसे ले जा सकते हैं, कुछ सलाह दीजिए।
1: सर, संगीत मेरे हिसाब से सर जितना मैंने समझा है जाना है, सारा जो खेल है या इसके पीछे का जो भी कुछ ये है सर, लॉजिक है, जितना आप सर समय देंगे प्रैक्टिस में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रियाज बोलते हैं। तो जिन लोगों को भी गाना गाना है, सीखना है, अगर उनकी आवाज ठीक ठाक है, तो अपने आवाज को एक रियाज के कारण या प्रैक्टिस के कारण उसको थोड़ा सा तराश सकते हैं,
0: जी
1: और जितना अच्छा आप अभ्यास किसी भी चीज का करेंगे तो आप उसमें से पारंगत बनते जाएंगे। तो ये किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, जिसे हम बोलते हैं किसी भी फील्ड में, ये एप्लीकेबल है सर। आप जिस भी प्रोफेशन में हो तो सेम एप्लीकेबल टू संगीत। पर आपको थोड़ा एक पागलपन जिसे बोलते हैं धुनी होना भी बहुत जरूरी है, कि फिर अगर आप जितना किसी चीज का रियाज करेंगे, जितना उस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, उतना ही वो निखरता चला जाएगा सर।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही साहब, बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो चलिए दोस्तों, फिर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: रविंद्र जी, आपकी आज तक की सबसे बड़ी असफलता या फेलियर क्या रही और उससे आपने क्या सीखा, उस अनुभव से क्या सीखा आपने?
1: तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मुझे असफलताएं तो बहुत सारी है, बट अगर मैं इसको केवल गायन तक या म्यूजिक तक रेस्ट्रिक्ट करूं, तो मैं अगर आपको बोलूं तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2005 में सारेगामा पा चैलेंज 2005 में।
0: जी
1: मैं एक लेवल तक आगे गया और वहां पे फिर मुंबई में होटल साहिल में, जिसे आप बोल सकते हैं सर, कभी कभी आप एंग्शियस हो जाते हैं या एंग्जाइटी के कारण
0: जी
1: मैं आगे नहीं बढ़ पाया सर।
0: ओहो
1: पर उसके पहले का मेरा सफर ऐसा था कि मैं हजारों लोगों में भोपाल से आगे बढ़ा। तो ये दो चीजें हैं सर। तो आई थिंक दैट कि उससे मुझे सीखने के लिए मिला कि थोड़ा आप जितना अपने आप को काम एंड कंपोज एंड फोकस्ड रख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप चीजों पे रिएक्ट कर सकते हैं, तो शायद उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं सर।
0: बहुत खूब दोस्तों, एक प्यारा सा संदेश कि हम अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखें, ना तो बहुत खुशी और ना ही बहुत गम, अपनी प्रतिभा की तरफ ध्यान दें, अपना प्रतिभा के ऊपर फोकस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत हो जाए।

0: थैंक यू वेरी मच।
1: रविंद्र भाई, अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
2: सर देखिए, मेरा जो मुझे जो याद किया जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो स्वभाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, फन लविंग पर्सन, एंड जिसे आप बोल सकते हैं कि सर मैं लोगों को बोल देता हूँ, मैं अपने मन की बात बोल देता हूँ
1: जी।
2: और बाकी जो सर मेरा सबसे बड़ा शौक है गाना, तो जो भी कुछ मैंने गाने गाए हैं पूरे इमोशंस के साथ, जिनके साथ मैं न्याय कर पाया हूँ सर, अगर लोग मेरे वो गाने सुने तो शायद वो देख पाएंगे कि हाँ उसपे मैंने अपना मेहनत और अपना लगन उसमें लगाया है, तो अगर उनके कारण मुझे जाना जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी सर।
1: बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। रविंद्र भाई, मुझे ये बताइए कि आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी एप्रिसिएशन या प्रशंसा क्या मिली है?
1: सर, प्रशंसा की बात करूं तो मेरे जीवन में एक समय था, जैसे हमारे जो सुपरस्टार रहे हैं फर्स्ट राजेश खन्ना जी, तो
0: जी
1: शायद ये कहना बहुत छोटी लाइक प्लेटफॉर्म है, छोटी सी बात होगी, बट मुझे याद आता है कि जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में था सर, सेवन्थ से लेकर के जो 10th स्टैंडर्ड तक का मेरा टाइम था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड। तो सर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे मीन्स कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, और इवन मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हुआ है, तो मुझे उसके कारण स्कूल में जाना जाता था, और मैं जहां जाता था वहां पे मैं प्रशंसा का पात्र रहता था। तो जिसमें कि मुझे जूनियर तानसेन करके भी मेरे को स्कूल में बुलाया जाता था,
0: ओहो, क्या बात
1: और
0: है।
1: इवन इवन सर ऐसा था बिकॉज बहुत बार जब म्यूजिक के एग्जामिनेशन के टाइम पे जब एग्जामिन ये आते सर एग्जामिनेशन के लिए आते थे म्यूजिशियंस, तो उन्होंने भी दो तीन बार बोला कि जो आपकी आवाज है वो बिल्कुल ग्वालियर घराने को सूट करती हुई एकदम
0: अरे वाह,
1: सटैक आवाज है मिस। तो ये कुछ ऐसे लम्हे रहे हैं सर कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
0: अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात। ग्वालियर घराने की याद दिलाई आपने, बहुत खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र भाई, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो।
1: सर देखिए, मैं मेरा जो समय था जब मैं कॉलेज लेवल से आगे बढ़ रहा था तो वो टाइम था। अगर मैं गाने की बात करूं सर, सबसे पहले तो उसमें सोनू निगम जी बहुत जल्दी जल्दी लैडर्स चढ़ रहे थे, बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो सारे गामा प ही वो एक प्लेटफॉर्म था जहां से उन्होंने वो आगे बढ़े और जिसको देखते सुनते हुए हम आगे लाइक निकले लाइफ में। उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म से श्रेया घोषाल जो आज भी वंडर्स कर रही है, और गाने की बात करूं तो आज के डेट में जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं सर, वो है अरिजीत सिंह। उनके गाने भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं और बहुत ही उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। और सर अगर देखा जाए तो ये तो आपने हस्तियों की बात की, बाकी फिर मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने पापा को भी, बिकॉज वो बहुत ही एक अलग किस्म के पर्सनैलिटी थे जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए और कैसे किसी भी प्रोफेशन में किसी भी ग्रुप में आपको घुल मिल के रहना चाहिए।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया बात, तीन बहुत ही प्रभावशाली लोग आपकी जिंदगी के, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए रविंद्र जी की ही आवाज से सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने आप को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है?
1: सर देखिए, वैसे तो मैं बहुत बाय नेचर, बाय जैसे बोलते हैं, मेरा जो फिजिक है उसके हिसाब से बहुत फिट पर्सन हूँ और इनर्जेटिक हूँ सर।
0: जी
1: बट फिर भी आज के भाग दौड़ के जीवन में, टेंस एटमोसफेयर में, सबसे पहला तो सर मेरा गाना ही है जो मुझे एक बोलते हैं कि बहुत ही एक शांति का अनुभव देता है।
0: जी
1: उसके अलावा फिजिकली अगर बात देखें तो सर मुझे खेलों खेल का बहुत शौक है, जिसमें अभी पिछले कुछ विगत 3-4 साल से मैं यहाँ पे नागपुर में फुटबॉल खेलता हूँ।
0: ओहो
1: और मैंने पहले कभी फुटबॉल खेला नहीं था, बट उसके बाद फुटबॉल में जो जो चीजें लगती है सब मैंने परचेस की और आज मैं काफी अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। बिकॉज फुटबॉल जो ऐसा गेम है, पूरा टीम गेम है, जिसमें आपको एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक भागना ही पड़ता है सर,
0: जी
1: और आपको एक जैसे बोलते हैं टीम भावना के साथ खेलना पड़ता है।
0: जी
1: और उसके अलावा यस, क्रिकेट तो शायद पूरे देश का जुनून है, तो हमने क्रिकेट भी खेला है तो वो भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं सर।
0: जी
1: तो ये दो स्पोर्ट्स है, साथ में थोड़ा बहुत जब समय मिलता है व्यस्त पीरियड में, बिकॉज प्रोफेशन जो अलाउ करता है वो टाइम बहुत कम दे पाता है, तो उसमें कभी वॉक कर लिया और थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेता हूँ सर।
0: वाह, क्या बात है।

आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि इसी स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहेगा और आप पूरी पर्सनैलिटी आपकी चमकती रहेगी। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी गायकी। रविंद्र जी, अगर आपको अधिकार दिया जाए, अथॉरिटी दिया जाए, तो आप सोशल मीडिया की दुनिया में क्या बदल देना चाहेंगे?
1: सर, सोशल मीडिया जैसे अगर हम केवल अभी गाने को ही सीमित रखें तो इसके बहुत फायदे भी हैं, पर इसके नुकसान हैं कि जो भी लोग आते हैं वो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी रियाज के, सबको एकदम से नेम एंड फेम चाहिए रहता है या फिर उनको रिकॉग्निशन चाहिए रहता है। सर, तो मेरा वही रहेगा कि ये अगर हम इसको सिंगिंग तक ही सीमित रखे, स्टार मेकर या स्म्यूल जो भी आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इनको सही तरीके से अगर लेते हुए उसका पूरा अभ्यास किया जाए और गाने को जिसको भी आपको परफॉर्म करना है उसका पूरा ऑब्जर्व करके सिंगर्स ने कैसे गाया उसमें अपना 100% दिया जाए, तो आप अपने परफॉर्मेंस में चार चांद लगा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को एक, जैसे बोल सकते हैं कि एक नया आयाम दे सकते हैं सर, तो उसका मिसयूज नहीं होगा सर। अदरवाइज तो सर फिर गाने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं।
0: बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने, बहुत बढ़िया बात कही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुने रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारी गायकी, अमेजिंग रविंद्र जी, मजा आ गया सुन के। अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: सर, संदेश तो ऐसा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत कंपटीशन है आज के समय में। लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज भी है, पर्सनल एस्पिरेशंस भी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो सिंगिंग है या म्यूजिक है बहुत बड़ा माध्यम है सर, जिसके कारण हम जिसे बोल सकते हैं कि एक अगर हम उसको एक मेडिटेशन की तरह लें या एक तपस्या की तरह लें, तो सर वो जीवन में आपको काफी शांति और सुकून दे सकता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है सर, ये सिंगिंग से रिलेटेड आप मुझसे जो बातें कर रहे हैं,
0: जी
1: तो अगर हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें तो सर सिंगिंग से आपको बहुत ही सुकून मिल सकता है, बट मुझे लगता है फिर आपको उसके पीछे अभ्यास, रियाज और निरंतरता रखना बहुत जरूरी है सर।
0: बिल्कुल ठीक बात है, कंसिस्टेंसी तो हमेशा जरूरी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लगातार करते रहना उसको चाहिए। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे संदेश लिए, आपके गीत सुने, बहुत मजा आया, बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर, हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था।

0: आज के कलाकार के इस मंच पर दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा जानते हैं ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का। और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है मालविका दास मैम तिनसुकिया आसाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दास मैम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप?
1: जी धन्यवाद, मैं मालविका दास तिनसुकिया आसाम से आप सभी का दिल से साधुवाद। मेरा खुद संगीत महाविद्यालय है जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ और तिनसुकिया में ही रहती हूँ।
0: दोस्तों आपने सुना मालविका मैम एक संगीत विद्यालय चलाती हैं। हम लोग तो इधर से उधर से

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है।

0: जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी
1: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था
0: जी
1: कि आप गायिका बने, और
0: जी
1: मैं
0: जी
1: आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा। आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इससे बहुत
0: जी
1: बढ़िया और बात हो भी कह सकती है। बहुत खूब
0: जी
1: दोस्तों, तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है,
0: जी
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी
0: तो दोस्तों, आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं, ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत।
0: मेहनत
1: जी
0: भाई, वाह क्या बात है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।